Mirchi. It's hot.

0: Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Let's go crazy.

अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने करियर में या अपनी एजुकेशन में सुपर फोकस्ड हो एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम गेटिंग नॉटी ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, देन मेरा सजेशन है ट्राई नॉट टू डेट एन एरीज पर्सन. क्योंकि आई विल टेल यू द वन थिंग अबाउट एन एरीज पर्सन इज उन्हें नॉटी होना इतना अच्छा लगता है दैट एनी गिवन स्लाइटेस्ट बिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी दे विल वांट टू गेट नॉटी विद यू एंड उनके एरोजिनस ज़ोन्स आर एवरीवेयर, सर से लेकर पांव तक. एरीज इज मोस्ट लाइकली द पर्सन हू इज गोइंग टू हैव अ किंक अबाउट फीट एज वेल. सो कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इफ यू आर समबडी जिसे बड़े मजे आते हैं हर जगह एडवेंचर पैशन एक्साइटमेंट दिखाने के, देन टोटली डेट एन एरीज. अगर आप एक ऐसे इंसान हो हु वांट्स अ मोर सोबर सटल काइंड ऑफ लव लाइफ इन द मोस्ट सटल सोबर काइंड ऑफ वेज, देन एक वर्गो को डेट कर लो बिकॉज दे आर एक्चुअली लाइक वेरी प्रॉपर. हा अब आप बताओ कि आप इन दोनों साइंस या फिर एनी साइन इन बिटवीन को डेट कर रहे हो, हाउ इज इट गोइंग फॉर यू एंड टू डिस्कस योर लव लाइफ हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RoCHIE. एंड व्हाइल यू फाइंड मी कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है।

Avicii. It's hot.

0: Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot.
0: Mirchi,

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। This is the Gaana Indie Top 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। ये वो शो है जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गानों में दो नई एंट्रीज हैं। हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है। सम स्पेशल शाउट आउट्स, आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंटडाउन की गाना नंबर 10 के साथ। गाने का नाम है मूव बॉडी, ज़ारा खान स्केल्स का गाना। चार हफ्तों से है ये बरकरार। पिछले हफ्ते से तीन पोजिशन नीचे ड्रॉप होके मूव बॉडी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद हर्ष नुस्सी की आवाज, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है साडी सुन। आठ हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके साडी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर द होल काउंटडाउन एंड अ कैसेट क्लासिक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय।

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स, सुनेगी कॉम्पोजिशन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड इस सारे कॉम्बिनेशंस की वजह से 8 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ अभी के अभी, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो एक ऐसे आर्टिस्ट की आवाज है जिसके साथ एक पूरी जनरेशन ने प्यार करना सीखा है। सोच के देखो, कॉलेज का पहला क्रश या वो एक तरफा प्यार, गाड़ी में बैठे रात की ड्राइव्स, एक पूरी जनरेशन को इन्होंने प्यार करना सिखाया। आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली शान। मैं शान का नाम भी ऐसे मुस्कुराए बिना नहीं ले पाती हूँ, बिकॉज उनकी गानों में, उनकी आवाज में हमें उनकी मुस्कुराहट सुनाई देती है। पूरे 3 दशक हो चुके हैं एंड शान इज स्टिल गिविंग अस द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ ऑल टाइम, चाहे वो फिल्मों के गाने हो या नॉन फिल्म गाने हो, चांद सिफारिश हो या हे शोना। अलग अलग प्यार के चैप्टर्स में कहीं ना कहीं शान की आवाज रही है। नाउ काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स अ नया नवेला गाना, उसमें उनके साथ हैं दीदार कौर, यानी दोनों का पहला कोलैबोरेशन है। उदीपन शर्मा का म्यूजिक है, श्लोक लाख के लिरिक्स, एंड इस गाने में वो शान के प्यार वाले सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, दीदार कौर एंड शान की आवाज में। गाने का नाम है दिलदारा, अ नई नवेली एंट्री। इस गाने ने डेब्यू किया है सीधा ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 8।

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।

0: लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।
1: गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना।

0: संजू राठौड़ की आवाज, गाने का नाम है बैंगल्स। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले मेरा फेवरेट सॉन्ग ऑन द काउंटडाउन, फरक की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम तारे, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना हो, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। संजू राठौड़ की आवाज ऐसी है, सुनते ही पता चल जाता है इट्स हिज सॉन्ग। इस काउंटडाउन पे एक नई नवेली एंट्री हुई शान कैन दीदार कौर की आवाज में। हमने सुना दिलदारा ऑन गाना नंबर 8। इनफैक्ट शान की आवाज भी वही है, पहले नोट से यू नो इट्स हिम। चाहे वो सिंगर की आवाज हो या कुछ गानों का इंट्रो म्यूजिक, वो गाने जो एकदम याद आ जाते हैं ना, दे गॉट दैट स्टिकीनेस फैक्टर। आज के शो में जो मैं कैसेट क्लासिक में आपके लिए गाना बजाने वाली हूँ, दैट इज आर 90s एंड 2000s का आइकॉनिक पिक, उस गाने का मैं इंट्रो म्यूजिक आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। @RJKanika पर आके बताओ ये म्यूजिक कौन से गाने का है।

0: एड आरजे करेंगे और इंस्टाग्राम पर बताओ मुझे गाना कौन सा है। ये पूरा गाना शो पर आगे हम आपके लिए प्ले करेंगे। बट टॉकिंग अबाउट टेक अवे फैक्टर्स, ऐसी आवाज, ऐसा म्यूजिक जिसे सुनते ही हम आर्टिस्ट को एकदम रिकग्नाइज कर जाते हैं, उसमें से एक आवाज है रेखा भारद्वाज की। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो उन्हीं का गाना है। शायद आप गाना पहली बार सुने लेकिन सुनकर लगेगा कि इस गाने को तो आप बरसों से जानते हैं। दैट मैजिक इज रेखा भारद्वाज। ये गाना मुसाफिर कैफे नाम की सीरीज का है, जो एक नेटफ्लिक्स सीरीज है, कंटेम्प्रेरी लव स्टोरी, यंग रिलेशनशिप प्रॉब्लम उसके बारे में है, लेकिन प्यार को डेफिनेशन दे दिया रेखा भारद्वाज की आवाज। क्योंकि रेखा भारद्वाज की आवाज में प्यार गहरा लगता है, सदियों पुराना लगता है। उनकी आवाज में वो तजुर्बा है, एक याद है जिसको सुन के लगता है कि ब्रो ये दर्द तो पहले भी झेला है। एंड मुसाफिर कैफे जो शो है वो एक बुक पे बेस्ड है, सो ऑलरेडी उसकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। द सीरीज इज ऑल अबाउट लव। ये जो गाना है ये भी एक नई नवेली एंट्री है। इस गाने का जो दिल है ना वो बहुत खूबसूरत है और बहुत दुखी भी है। द सॉन्ग इज अबाउट राइट पर्सन रॉन्ग टाइम, पर रेखा भारद्वाज की आवाज में इट विल ऑल साउंड मैजिकल। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। नई नवेली एंट्री ऑन द काउंट डाउन, राघव कौशिक एंड रेखा भारद्वाज की आवाज, अमृता सलूजा के लिरिक्स, राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है दरमिया। इट डेब्यू सीधा ऑन गाना नंबर 5। यू ऑल लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 5।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: नंबर 4

0: अनीश सरकार हृदय की आवाज में गाने का नाम है उड़ी उड़ी। 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 1 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, which is all about the hottest pop music of the week. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jao, follow karo. Follow karna bilkul free hai. Handle is at RJ Kanika. Koi gaana suggest karna hai, baatein batani ho, bindaas aake hit me up. Independent music basically ek artist ko wo mauka deta hai ki tum jo feel karte ho, jo mehsoos karte ho, jo kahani batana chahte ho, apne music ke zariye wo batao. एंड स्पेस में कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ट्रूली म्यूजिक में मीनिंग ढूंढा है, एंड वन ऑफ दोज आर्टिस्ट इज इंडियन ओशन, लेजेंडरी आइकॉनिक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। व्हाट अ बैंड, आई स्वेयर हर किसी को इंडियन ओशन का लाइव शो देखना चाहिए, आपको गूज बम्स आ जाएंगे। दे ट्रूली डिफाइन द इंडिपेंडेंट इन इंडिपेंडेंट म्यूजिक बिकॉज वो कल्चरल पे कॉमेंट्री करते हैं, अपने ओपिनियन देने से कतराते नहीं है। उनका म्यूजिक कहीं ना कहीं हमें इंटरनली रिफ्लेक्ट करने पे मजबूर कर देता है। आज हम इंडियन ओशन के ही एक गाने को स्पॉटलाइट देने वाले हैं। ये ऐसा गाना है जो आपको रुकने पे मजबूर कर देता है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम जब भी किसी इंसान से मिलते हैं, वे आर वेरी क्विक टू जज। नाम से कोई ना कोई लेबल लगा देते हैं कि ये इस तरफ का है, वो उस तरफ का है, ये अपना है, वो पराया है। एक बार हमने ये करना शुरू कर दिया ना बॉस, हमको सिर्फ वही दिखता है। और ये गाना जो है वहीं पे हमारी नब्स पकड़ लेता है कि ये क्या लगा रखा है उस नाम के पीछे, उस लेबल के नीचे। सामने वाला बंदा बिल्कुल मेरे और तुम्हारे जैसा ही है। That's the beauty of Indian Ocean. उनके गाने आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, उनके गाने सवाल भी उठाते हैं और आईना भी दिखाते हैं। That's why their voice matters and they are truly one of those artists जो music and meaning को साथ में लेके चलते हैं। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। जिस गाने की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है रुक जा रे बंदे। तो थोड़ा रुक कर इस गाने को सुनो, इंडियन ओशन का रुक जा रे बंदे ऑन आर स्पॉटलाइट दिस वीक। बंदी का नाम है RJ Kanika। Enjoy.

इस गाने में ना वो बात है कि आसपास का सारा शोर एकदम के लिए रुक जाता है और आप इस गाने को सुनने के लिए, महसूस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इंडियन ओशन द बैंड का दैट वॉज बंदे ऑन आर स्पेशल स्पॉटलाइट दिस वीक। @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, कोई भी ऐसा गाना जो आपको रुकने पर मजबूर कर देता है मुझे उस गाने के बारे में बताओ, एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, नूर खान मधुर एक्सो का आरजू इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। उसके बाद मिट्टा रॉयर की आवाज होने की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा। 20 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार शीशा इज ऑन गाना नंबर 2। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची पर शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों का काउंटडाउन, जिसमें दो नई एंट्रीज हैं। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

एंड जो गाना हम आज फीचर करने वाले हैं इज गाने का नाम है तन्हा दिल इन द वॉइस ऑफ वन एंड ओनली शान. इट्स ट्रू दैट ये गाना एक पूरी जेनरेशन का एंथम था. साल 2000 मिलेनियम नया नया शुरू हुआ था, नई जॉब्स क्रिएट हो रही थी, नए कॉलेजेस आ रहे थे एंड पहली बार बहुत सारे नौजवान अपने घर छोड़ के निकल रहे थे, कोई नए कॉलेज के लिए, नए शहर के लिए, पहली नौकरी, नया फोन जिस पे एसटीडी के पैसे बचाने के लिए मिस कॉल दिए जाते थे. उस पूरे दौर का जो दिल था ना वो कहीं ना कहीं इस गाने में है, तन्हा दिल. क्योंकि ये तन्हाई किसी ब्रेकअप वाली तन्हाई के बारे में नहीं है, ये घर से दूर एक नए शहर में कमरे में कोई अकेला बैठा है, घर की याद, माँ के हाथ के खाने का स्वाद, वो बचपन का दोस्त जो सब पीछे छूट गया. पर दिस सॉन्ग कैप्चर्स अ यूनिवर्सल फीलिंग, राइट? तन्हा दिल तन्हा सफर. ना यूट्यूब था ना इंस्टाग्राम था, लेकिन ये गाना और बहुत सारी लैंग्वेजेस में अडैप्ट हुआ था एंड आज 2026 में भी ये फीलिंग इतनी रेलिवेंट है क्योंकि कोई ना कोई आज भी अपना घर छोड़ के एक नए शहर में है, थोड़ा लॉस्ट फील कर रहा है, मे बी अपनी फैमिली को मिस कर रहा है, बस कैसेट की जगह हाथ में फोन है बट फीलिंग तो वही वाली है. और शान की आवाज में दिस सॉन्ग कैप्चर्स इट ऑल, तो अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. कैसेट क्लासिक विद दिस वीक राम संपत की कॉम्पोजिशन, शान की आवाज, तन्हा दिल इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक. बंदी का नाम है आरजे कनिका. एंजॉय.

शान की आवाज, राम संपत की कॉम्पोजिशन, दैट वॉज तन्हा दिल ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। गाना भले पुराना हो, फीलिंग वही है, चाहे आप घर से दूर हो या ना हो, ये गाना सबके लिए है। एट आरजे कनिक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, कोई भी 90s एंड 2000s का वो पॉप सॉन्ग जो आज भी आपको बहुत पसंद है, हमारे साथ शेयर करो। मैं और मेरा साउंड प्रोड्यूसर अशकाय, हम दोनों आपके कैसेट क्लासिक के रिक्वेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी, which is the numero uno song of the week, यानी इस हफ्ते का गाना नंबर एक। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, उन्हीं की आवाज, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है बैरन। दिस हरियाणवी पॉप सॉन्ग इज येट अगेन ऑन गाना नंबर एक। यू आर लिस्टिंग टू गाना इन द टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर वन।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: Why is Bollywood not making us curious often enough? यार देखो ट्रेलर आता है और 2 मिनट में लगता है कि हमें तो सब कुछ समझ आ गया है, फॉर्मूला सेम है, एक्शन सेम है, कॉमेडी सेम है, बस एक्टर्स नए हैं। लेकिन पिछले हफ्ते कुछ फिल्मों ने वाकई क्यूरियोसिटी जगाई है। हैवान ने कहा अब किलर अक्षय, एक ब्लाइंड सैफ एंड प्रियदर्शन। टॉक्सिक ने कहा या तो ब्रिलियंटली गुड या तो टेरिफाइंगली बैड। और आवारापन 2 ने ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी यादों को दोबारा जिंदा कर दिया। शायद लोगों को अब बड़ी फिल्में नहीं, ज्यादा सरप्राइजिंग फिल्में चाहिए, क्योंकि थिएटर तक स्टार नहीं दोस्त, क्यूरियोसिटी खींच के लेके आती है। हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक काउंटडाउन, जहां पे म्यूजिक से बड़ी होती है बातें। एंड स्टार्टिंग ऑफ नंबर 20 पर है कॉकटेल 2 का ये गाना, सॉन्ग बाय द किंग अरिजीत सिंह, ये है तुझको।
0: नंबर

तुझको के बाद नंबर 19 पर है एक ब्रांड न्यू एंट्री फ्रॉम राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है। अमित त्रिवेदी का ये गाना है कॉल्ड रंग बरसे, नो कनेक्शन टू दी ओल्ड अमिताभ बच्चन क्लासिक। इसे गाया है राघव चैतन्य और शिल्पा राव ने एंड अल्फाज हैं कुमार भाई के। एक बहुत ही अच्छा गाना जो एक ऑर्डिनरी फिल्म से कई ज्यादा अच्छी फिल्में होना डिजर्व करता था। नंबर 9।

0: जाइए सजना एंड धुरंधर इंडिया और पाकिस्तान को आज के नजरिए से देखती है, लेकिन आजादी के इस हफ्ते हम 80 साल पीछे जा रहे हैं, पार्टीशन तक, बंटवारे तक। अजीब बात है ना, 80 साल हो गए लेकिन हम अब भी उसी कहानी पर फिल्में बना रहे हैं। ट्रेन्स, सरहदें, बिछड़ते परिवार, छूटते हुए घर और वो लोग जिन्होंने एक मुल्क को पीछे छोड़कर दूसरे मुल्क में जिंदगी शुरू की। सब कह चुके हैं, सब दिखा चुके हैं, तो फिर अब नया क्या होगा। मेरे लिए बंटवारे पर फिल्म बनाने का असली चैलेंज यही है। इतिहास ने तो कहानी लिख दी है, अब सिनेमा को नजरिया ढूंढना है, क्योंकि ऑडियंस को दोबारा ये बताने की जरूरत नहीं है कि बंटवारे ने क्या छीना। हमें ये देखना है कि उसके बाद लोगों ने क्या बनाया। थिएटर्स में इस हफ्ते पार्टीशन पर एक और फिल्म आ रही है, जिसे बनाया है राजकुमार संतोषी ने एंड इट स्टार्स सनी देओल एंड इसे प्रोड्यूस किया है आमिर खान ने। देखना यह होगा कि 80 साल बाद ये जो नया इंडिया है, क्या बंटवारे की उस कहानी को उतना ही प्यार देगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं उन फिल्मों की जिसमें बंटवारे को दिखाया है, तो एक फिल्म मुझे और याद आती है जहां पे एक ऐसा बच्चा जिसने अपना घर खोया, अपने परिवार को खोया और फिर दुनिया को अपना नाम याद करवा दिया, एक रेफ्यूजी जो इंडिया का एक महान एथलीट बना, मिल्खा सिंह। उनकी जिंदगी पर आधारित ये कहानी भाग मिल्खा भाग और उसका सबसे पावरफुल गाना संग बाय सिद्धार्थ महादेवन, संगीत शंकर एहसान लॉय का और लिखा है प्रसून जोशी ने। ये है जिंदा।
1: पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 7
1: तू

0: तुम्हें वो बंधु की वो केयर फ्री सी दुनिया जहां दोस्त हैं, रोमांस है और लाइफ थोड़ी सिंपल लगती है। करण जौहर ने अपनी पहली दो फिल्म्स में हमें इसी दुनिया का सपना दिखाया था। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, बड़े घर, बड़े इमोशंस, बड़े गाने। और फिर 2006 में करण ने खुद अपने बनाए हुए ड्रीम वर्ल्ड में एक दरवाजा खोला, कभी अलविदा ना कहना। एक ऐसी कहानी जहां शादी है, प्यार है, लेकिन प्यार के बावजूद लोग खुश नहीं है। इंडिया ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। किसी ने कहा इट वाज अ ब्रेव फिल्म, किसी ने कहा ये तो एंटी संस्कारी है। करण खुद मानते हैं कि फिल्म थोड़ी ओवरब्लोन थी, लेकिन उसका दिल सही जगह पर था। शायद 20 साल बाद हम समझने लगे हैं कि वो क्या कहना चाहते थे। मेरा एक सवाल जरूर है, करण ने इनफिडेलिटी को जज नहीं किया, लेकिन क्या उन्होंने उसे पूरी तरह समझने की कोशिश की? क्योंकि वो कहानी के बीच में नहीं खड़े थे, वो बस दूर से देख रहे थे। लेकिन एक बात तय है, कभी अलविदा ना कहना के बाद करण जौहर ने कभी पहले जैसी फिल्में नहीं बनाई। वो उस फिल्म से पूरी तरह उबर नहीं पाए। 20 साल बाद उसी फिल्म का एक गाना जो शायद वक्त से कभी बाहर ही नहीं हुआ, तुम ही देखो ना, सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में। दिस इज माई स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक,
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 5.

तबाही टॉप 5 में आ गया है और उसी वक्त टॉक्सिक के ट्रेलर ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है, भाई ये फिल्म है क्या? देखो मैंने ट्रेलर देखा और मुझे एक चीज समझ आ गई, ये फिल्म या तो ब्रिलियंटली गुड होगी या टेरिफाइंगली बैड होगी, बीच का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। कहानी है गोवा की, लेकिन वो गोवा नहीं जो हम पोस्ट कार्ड में देखते हैं, दोस्तों के साथ ट्रिप पे चले जाते हैं। ये 1960s के गोवा की कहानी है। इंडिया आजाद हो चुका था लेकिन गोवा अभी भी पोर्चुगीज के कंट्रोल में था, और इसी दुनिया में पावर है, ग्रीड है, गैंग्स हैं, और वायलेंस इतनी कि कभी कभी लगता है कि स्क्रीन भी खून से भीग जाएगा। और जो इस फिल्म में औरतें हैं, द वेमेन, जी हाँ, कैरेक्टर्स पावरफुल हैं, लेकिन उन्हें जिस तरह फ्रेम किया गया है, जिस तरह सेक्सुअलिटी और वायलेंस को उनके साथ मिक्स किया गया है, वो एम्पावरमेंट और ऑब्जेक्टिफिकेशन के बीच की जो लाइन है उसे बहुत अनकंफर्टेबल तरीके से ब्लर करती है। शायद इसलिए टॉक्सिक का ट्रेलर मुझे एक्साइट करने से ज्यादा इंट्रीग कर रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम सिनेमा में इतना एक्सट्रीम होने की परमिशन खुद को बहुत कम लोग देते हैं। अब सवाल यह है कि ये मैडनेस सिनेमा बनेगा या सिर्फ मैडनेस ही रह जाएगा, ये तब पता चलेगा जब फिल्म बहुत जल्द थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टॉक्सिक को हम साइड में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे टू गुड ओल्ड फैशन बॉलीवुड। ये कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल का गाना ऊंचा लंबा कद, व्हिच इज ऑन नंबर 4 दिस वीक। नंबर 4।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 3

यार इमरान हाशमी को भी बॉलीवुड ने एक अजीब सा गिफ्ट दिया है। वो हर बार हीरो बन के नहीं आए, कभी वो लवर बने, कभी गैंगस्टर, कभी एक जर्नलिस्ट, कभी वो आदमी जो खुद से ही हार रहा था। लेकिन हर बार उनके पीछे एक ऐसा गाना जरूर था जो पिक्चर से बाहर निकल गया।

जरा सा जन्नत से निकला था, लेकिन कितने लोगों की अपनी लव स्टोरी का बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया। किसी को शायद वो पहली बार किसी के लिए फील करना याद आया, किसी को वो रात याद आई जब फोन हाथ में था और मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं थी।

0: फिर आया बीते लम्हे और जिस सिन से गाना था द ट्रेन, उसकी कहानी पीछे रह गई, लेकिन हार्ट ब्रेक की कहानी में ये गाना आज भी फ्रंट रो में बैठा है।
1: बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं।
0: और फिर बोल दो ना जरा, वो तो जैसे उन लोगों का गाना बन गया जिनके पास कहने को बहुत कुछ है, बस कह नहीं पाते। शायद इसलिए इमरान की सबसे बड़ी लेगेसी उनका बॉक्स ऑफिस नहीं रही है। इमरान की फिल्मों ने हमें अपने इमोशंस के लिए गाने दिए हैं। एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट आवारापन, उस लेगेसी में एक और खूबसूरत एडिशन। लेकिन इन सबके बावजूद एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदल रही, 37 हफ्तों से गाना इस काउंटडाउन पे मौजूद है एंड इट स्टिल इज नंबर 1 ऑन द मिर्ची टॉप 20। द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द काउंटडाउन वंस अगेन इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर बाय अरिजीत सिंह। नंबर 1।

0: आज का एपिसोड सिर्फ काउंटडाउन नहीं था, एक बच्चे की कहानी थी जिसने अपना घर खोया और एक देश को नाम दिया। एक सवाल था कि 80 साल बाद हम क्या बन गए हैं, और कुछ गाने थे जो आजादी को सल्यूट नहीं करते, उसका मतलब ढूंढते हैं। शायद यही है इस मुल्क का असली गाना, सवाल, बेचैनी और थोड़ी सी उम्मीद। और इन सबके बीच नंबर वन पर गहरा हुआ इटर्नल रोमांस। कुछ गाने चार्ट्स पर ऊपर रहते हैं और कुछ वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। ये था आपका मिर्ची टॉप 20 एंड मैं आपसे जल्द मिलूंगा नई स्टोरीज और नए गानों के साथ। तब तक गाने सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot.

0: साथ।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची, इट्स हॉट। 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: गुड़ किन खालिया
1: स्वीटी,
0: गुड़ वाली चाह किन पीती
1: स्वीटी,
0: बुआ जी दा नाला किन खिचिया
1: हां
0: खिच के मार किन सीटी।

हेलो मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसला और तुम्हारी मॉर्निंग का ये रिमाइंडर है कि अडल्टिंग इज बेसिकली जस्ट सेइंग हाँ हाँ आई एम ओके एंड कैरिंग ऑन विद लाइफ, जो चाहे प्रॉब्लम्स चल रही हो। वैसे देसी मॉर्निंग्स ना, उनकी एक अलग ही वाइब होती है। अलार्म बजता है, हम स्नूज करते रहते हैं, फिर मम्मी की आवाज आती है और हम उठ के खड़े हो जाते हैं। ये सब अगर तुम मिस करते हो तो तुम बिल्कुल सही जगह पर हो, क्योंकि हम थोड़ी सी बॉलीवुड की गॉसिप करेंगे, थोड़ा सा देसी नॉस्टैल्जिया, अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स एंड ऑफ कोर्स साथ साथ में होने वाली है मेरी बकबक एंड वो मिर्चीदार बैंगर्स जो तुम्हारे लिए प्ले करने वाले हो मैं आज के मिर्ची मॉर्निंग्स में। मेरा नाम है प्रिसला एंड कम एंड से हाय ऑन इंस्टाग्राम। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। और एक कॉन्टेस्ट भी चल रहा है राखी के उपलक्ष्य में, जिसके बारे में थोड़ी सी देर में बताऊंगी तुम्हें। तब तक के लिए मिर्ची दर बैंगर सुनो और सुनते रहो मिर्ची मॉर्निंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot.

मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, मेरा नाम है प्रिसला एंड यू आर लिस्निंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स। और आप सुनने वाले हो वेदर अपडेट। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट 68 डिग्रीज फारेनहाइट, स्काइज आर क्लियर एंड इट फील्स लाइक 69 डिग्रीज फारेनहाइट। लेकिन डोंट गेट टू कम्फर्टेबल, अराउंड नून होने वाला है थोड़ा सा पार्टली क्लाउडी माहौल एंड 4 बजे शायद रेन एक्सपेक्टेड है। टुडेज हाई इज 82 डिग्रीज फारेनहाइट विद द फील्स लाइक टेम्परेचर पोटेंशियली रीचिंग टू 86 डिग्रीज फारेनहाइट। यू नो ह्यूमिडिटी सनशाइन और विंड की वजह से। एंड हियर इज द इंपॉर्टेंट बिट, देयर इज अ फ्लड वॉच इन इफेक्ट, सो इफ यू आर हेडिंग आउट टू वर्क, लेटर गोइंग आउट फॉर एरेंड्स, कीप एन आई ऑन द वेदर एंड गिव योरसेल्फ सम एक्स्ट्रा ट्रैवल टाइम। रेनफॉल ओवर द नेक्स्ट 24 आवर्स कुड रीच अराउंड 38 millimeters विद विंड गस्ट्स अप टू अबाउट 8 kilometers per hour। सो कम्पेयर टू येस्टरडे, आज काफी कूलर रहने वाला है माहौल। कल का पीक टेम्परेचर था 87 डिग्रीज फारेनहाइट, वाइल टुडे टॉप्स आउट अराउंड 82 डिग्रीज फारेनहाइट। सो बाहर निकलते टाइम SPF 50++++ लगाना तो बिल्कुल मत भूलना, और अगर जरूरत ना हो तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स गोना रेन हेवीली। एंड साथ साथ में लेयर के प्लेयर बनकर बाहर जाओ एंड मिर्ची सुनते रहो। एंड वाइल यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, लेट मी क्विकली रिमाइंड यू कि नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधनपुरा इज ऑन। डू यू हैव दैट one sibling picture with you that instantly makes you go अरे यार हम कितने cute हैं, ऐसे pictures हमको भेजो अभी के अभी। And you could win some amazing hampers courtesy Nanak Foods, bringing sweetness to your life. फटाफट से type करो राखी and send it to 9033 मिर्ची, that's 9033647244 along with your cutest bestest sibling moments के pictures। And तो मुझे DM भी कर सकते हो, मिर्ची प्रिस is my handle name on Instagram and X, that is MIRCHIPRIS. This is in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road, जहाँ पर festive special offers चल रहे हैं 22 carat gold and diamond jewelry पर। Visit करो ViraniJewelers.com and अभी मिर्चीदार bangers का time है on Mirchi Mornings with me Priscilla. Stay tuned and stay hot.

there. Good morning. Priscilla here and welcome back to Mirchi Mornings. जहां पर अब हम सुनने वाले हैं Mirchi Hour का 3. सबसे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अगेंस्ट व्हाट ही कॉल्ड द मोस्ट क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन अनाउंस किया है और ईरान को फाइनेंशियली या बिजनेस सपोर्ट देने वाले कंट्रीज और एंटिटीज को सिवियर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की वार्निंग दी है. दिस इज अ डेवलपिंग इंटरनेशनल स्टोरी, सो वील कीप यू पोस्टेड. एंड नंबर टू पर इंडिया के उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रवि कुमार दिवाकर के कोर्ट से अराउंड 100 पेंडिंग क्रिमिनल केस दूसरे जज को ट्रांसफर किए गए हैं. रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने पिछले 4 महीनों में 10 केसेस में 22 डेथ सेंटेंसेस दिए हैं. लॉयर्स और लिटिगेंट्स की कंसर्न्स के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से केसेस रीअसाइन हुए हैं. एंड लास्टली स्पोर्ट्स से इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन एंड जॉश टंग ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसा बैक टू बैक बोलिंग मोमेंट क्रिएट किया जो टेस्ट क्रिकेट में पहली बार हुआ है. दोनों ने कंसेक्यूटिव डिलीवरीज पर 5 विकेट होल्स कंप्लीट किए. रॉबिन्सन ने 9th विकेट लिया और नेक्स्ट बॉल पर टंग ने मोहम्मद अब्बास को आउट कर दिया. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर. मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ बने रहो मिर्ची मॉर्निंग्स पर एंड कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर नंबर

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई, बजा।

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज की स्टोरी जो है ना, इट्स गिविंग अ वेरी देसी लेसन। क्या है वो लेसन, लेट्स फाइंड आउट। बजट छोटा भी हो सकता है, लेकिन माँ का सपोर्ट अनलिमिटेड अगर मिल जाए ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। चाइना में न्यू लाई नाम की एक फिल्म है, विच इज क्रिएटेड बाय फिल्म मेकर शिन युमेंग एंड हिज मदर सून लीफान। इट्स गोइंग वायरल। क्यों? Partly because people called it one of the worst Chinese films because of its rough animation. Lekin ek plot twist hai. The film made on almost an unbelievably tiny budget, which is around $200, has reportedly gone on to earn around $3 million. And mom jo hai didn't just cheer from the sidelines. Soon Lifan taught herself 3D animation, voiced the characters and sang the theme song. All to help her son's dream come true. So basically, मम्मी ने कहा बेटा तू ड्रीम फॉलो कर, बाकी मैं संभाल लूंगी। जो कि दुनिया की हर मम्मी करना चाहती है, कहती है और कर भी देती है। Honestly यार, forget about 5-star reviews. Sometimes माँ के हाथ का 5-star rating is all you need. And I'm not talking about गाल पे चाटा. I'm talking about a pat on your back. And speaking of something sparkling, Tanishq presents Festival of Diamonds, जहाँ पे तुम्हें 25% off मिल रहा है diamond value पर और making charges पर। साथ साथ में अगर तुम्हारे पास पुराना gold रखा अपनी मम्मी का, जो कि 18 carat से above है, उसे लेकर जाओ Tanishq पर, 0% deduction पर exchange कराओ। So तुम्हारा jewelry box जो है वो बहुत ज्यादा excited होना चाहिए अभी। Of course Tanishq पर Festival of Diamonds चल रहा है, जहां पे terms and conditions applied है, और अभी चल रहा है मिर्ची मॉर्निंग्स मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स एंड अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग टुडे. ऑगस्ट 20th इज क्लियरली हैविंग अ सेलिब्रिटी मोमेंट बिकॉज आज के दिन बर्थडे केक तुम शेयर कर रहे हो कुछ बड़े ही बड़े बड़े नामों से. टुडे वी सेलिब्रेट एक्टर एमी एडम्स, एंड्रू गारफील्ड, सिंगर जिमी लवाटो एंड लेजेंडरी म्यूजिशियन रॉबर्ट प्लांट. प्लस बर्थडे स्क्वाड में वी गॉट एल रोकर, बेन बार्न्स, मीशा कॉलिंस, की ह्यू क्वान एंड फ्रेड डस्ट. तो अगर आज तुम्हारा भी हैप्पी वाला बर्थडे है, जस्ट रिमेम्बर तुम फेमस लोगों के साथ अपना बर्थडे शेयर करते हो, बस उनके पास रेड कार्पेट है और तुम्हारे पास तुम्हारा फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर 47 हैप्पी बर्थडे बेटा वाले मैसेजेस अभी पड़े होंगे. एंड नाउ स्पीकिंग ऑफ फैमिली, मिर्ची करेगा बंधन पूरा इज हियर, ब्रॉट टू यू बाय नानक फूड्स. राखी के इस पावन अवसर पर पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप पर टाइप करो राखी, दैट इज RAKHI. टाइप करने के बाद अपना पूरा नाम टाइप करो और उसे अपने सिबलिंग पिक्चर के साथ भेज दो 9033 मिर्ची पर. दैट्स 9033647244. एंड यू कैन ऑल्सो डीएम मी, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS, टू डबल योर चांसेस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्टेस्ट एंड यू कुड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड विद फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट करो वीरानीज्वेलर्स.com. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड. सो अभी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो या राखी के त्योहार की तैयारी कर रहे हो, सेलिब्रेट योर पीपल, शेयर योर मेमोरीज एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला.

0: इज प्रिसिला विद यू ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स और अब टाइम है गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट जानने का।
1: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,400, $4,400 के मार्क पर वापस गोल्ड पहुंच गया है और मार्केट एग्रेसिवली अपर ट्रेंड पर है। इससे पहले गोल्ड के प्राइसेस अपर ट्रेंड पर जाएं, आप आइए 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड जो प्लैटिनम की रिंग में सेट हो। राज ज्वेल्स की यूनिक फाइनेंसिंग ऑप्शन जिसमें आप 0% इंटरेस्ट पे 0 डाउन पेमेंट के साथ बिना किसी हिडन फी बिना किसी इंटरेस्ट के आज गोल्ड का प्राइस लॉक कर सकते हैं। वो खूबसूरत सी ज्वेलरी आज घर ले जा सकते हैं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे सकते हैं बिना किसी हिडन फी के। कैसे? आइए राज ज्वेल्स के साथ क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें और अप्रूव होने पे आज ज्वेलरी घर लेके जाएं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में बिना इंटरेस्ट के पैसे दें और गोल्ड का प्राइस आज लॉक करें ताकि जब 9 महीने तक अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ा हो तो वो बेनिफिट आपके साथ आपके गहनों में आपके गोल्ड में आपके पास रहे। आइए rajjewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें।
0: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड एंड सिल्वर का लेटेस्ट रेट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी मिर्चीदार गानों की बारी है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मजाओ रंगून कर पिहे शक तू लाके मेरे शम तन तेरा ढक दू जितना मैं दूर उतनी तू गुस्सा मार ले गुस्सा गाली न बक तू आलिया जैसी बात है तेरी पिक्चर हिट शुरुआत है तेरी।

0: AG, the gangster.
1: Good morning, जी, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. Welcome to मिर्ची आवका 3, जहाँ पर तीन अपडेट्स मिलती हैं तुम्हें from around the world. सबसे पहले एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है, अलेजेडली शोइंग 3 चाइनीज सोल्जर्स फ्लाइंग अराउंड ऑन सिंगल पर्सन जेट पैक्स. नो ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन येट, सो ऑथेंटिसिटी रिमेन्स अनवेरिफाइड. अर्लियर डेमोंस्ट्रेटर्स हैव शोन जेट पैक लाइक डिवाइसेस दैट कैन फ्लाई फॉर ओनली अ फ्यू मिनट्स. नंबर 2 पर इंडिया हैज रिमूव्ड द एक्सटर्नल सिक्योरिटी पेरीमीटर आउटसाइड द पाकिस्तान हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली, डेज आफ्टर पाकिस्तान रिमूव्ड सिक्योरिटी बैरिकेड्स आउटसाइड द इंडियन हाई कमीशन in Islamabad. Diplomatic developments continue to unfold, so we'll keep it factual and keep you posted. And lastly, sports se hockey mein India ne Pakistan ko 5-3 se beat kiya hai. 8-goal thriller at the Men's Hockey World Cup 2026 in Amstel, Wien, and India moves into the second round while Pakistan is out of the title race. India's unbeaten run against Pakistan now stands at 20 matches. And that's your Mirchi Hour ke 3. Main ho Prisala tumhare saath mein. Let me remind you to follow me. Mirchi Pris is my handle name, Instagram and X par, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में राशि जोन वन में तुम्हारा स्वागत है ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: एरीज यानी कि मेष राशि, बोल्ड आइडियाज का दिन है आज। कुछ अनयूजुअल सोच रहे हो, एक्सप्लोर इट, बस इंपल्स को जीपीएस मत बनने देना। लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, मनी मैटर्स में थोड़ा सा अलर्ट रहो, फाइन प्रिंट देखो, डिटेल्स चेक करो, वॉलेट को सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लकी कलर इज ऑलिव ग्रीन, लकी नंबर इज 6। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज किसी फ्रेंड की हेल्प करने का मन करेगा, लेकिन स्केड्यूल में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स आ सकते हैं, प्लान बी को रेडी रखना। लकी कलर फॉर यू इज कोरल, लकी नंबर इज 21। कैंसर यानी कर्क राशि, प्रोडक्टिविटी मोड ऑन करो, हेल्थ रूटीन या वर्क प्लेस में कुछ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स करने का परफेक्ट पुश मिल सकता है। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 9। लियो यानी कि सिंह राशि, रोमांस के लिए गॉर्जियस डे है, परफेक्शन के पीछे मत भागो यार, ऑथेंटिसिटी इज योर रियल सुपर पावर, बस ड्रामा को थोड़ा सा दूर रखो। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 3। वर्गो यानी कन्या राशि, होम या डेली रूटीन में छोटी मोटी इंटरप्शंस हो सकती है, बट योर कॉन्फिडेंस इज स्ट्रॉन्गर देन क्योर्स, यू गॉट दिस। लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 18। एंड दैट्स राशि'स ओन पार्ट 1। बाकी बची 6 साइंस आएंगी थोड़ी सी देर में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, फॉलो मी, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot. Kudi candy baby pehla jaguar le lo, feel jinna marzi piya le lo, piya le lo.

0: Welcome back to Mirchi Mornings. My name is Priscilla and this is Rashi Zone Part 2.
1: Mirchi Rashi Zone.
0: लिब्रा यानी तुला राशि, आज ब्यूटी और एस्थेटिक्स के मूड को ऑन पॉइंट रखो। वार्डरोब रिफ्रेश करना है, गो फॉर इट। बस आई हैव नथिंग टू वेयर बोल के क्लोजेट के सामने खड़े मत रहना। लकी कलर इज पीच, लकी नंबर इज 27। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, पोजेशंस और मनी पर एक्स्ट्रा नजर रखो। थोड़ी कंफ्यूजन पॉसिबल है, सो रिसीट्स, पेमेंट्स और पासवर्ड सबको डबल चेक करो। लकी कलर इज मिड नाइट ब्लू, लकी नंबर इज 11। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, मून तुम्हारी साइन में है, सो स्लो डाउन, रीग्रुप एंड एंजॉय द सिंपल स्टफ। कभी कभी लाइफ का बेस्ट प्लान ना थोड़ी देर चिल करना होता है। लकी कलर इज सैफरन, लकी नंबर इज 5। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, कीप थिंग्स लो की टुडे, बिहाइंड द सीन्स वर्क एक्चुअली वर्क्स इन योर फेवर। हर अचीवमेंट को लिंक्डइन पर बताना जरूरी नहीं होता है। लकी कलर इज चारकोल ग्रे, लकी नंबर इज 22। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, करियर वाइज this is your power zone. A positive momentum could open up fresh professional opportunities. Universe basically keh raha hai, update that resume, bestie. Lucky color is turquoise, lucky number is 8. Pisces यानी कि मीन राशि, a steady grounding day for you today. Emotional situations को quietly and sensitively handle करें. Not every feeling needs a 5 paragraph explanation. Lucky color for you is blue, lucky number is 16. And that's the end of Rashi Zone Part 2. मैं वो प्रिसिला तुम्हारे साथ में, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। जाकर मुझे देख भी लो, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप करो मुझे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

दिस इज प्रिसिला विथ यू एंड मिर्ची. मॉर्निंग्स इज रैपिंग अप. अगर तुम कम्यूट कर रहे हो कॉफी के साथ, सर्वाइवल मोड में हो, या फिर सीक्रेटली ऑफिस पहुंच कर भी पार्किंग लॉट में बैठ कर विचार विमर्श कर रहे हो, थैंक यू फॉर हैंगिंग आउट विथ मी, बोले तो प्रिसिला दिस मॉर्निंग. बट बिफोर आई डिसअपीयर, एक इम्पोर्टेंट फैमिली अलर्ट देकर जाती हूँ भाई. राखी का त्योहार इज राइट अराउंड द कॉर्नर और मिर्ची पर चल रहा है एक कॉन्टेस्ट विच इज नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा. तो मुझे दिखाओ वो सिबलिंग मोमेंट्स जो देखते ही तुम बोलते हो यार हम लोग कितने क्यूट हैं और कितने अनोइंग भी हैं. अपने सिबलिंग के साथ कोई भी पिक्चर मुझे भेजो पार्टिसिपेट करने के लिए. व्हाट्सएप करो राखी, लिखो RAKH आए और उसके बाद अपना पूरा नाम और अपनी सिबलिंग पिक्चर्स भेज दो मुझे 9033 मिर्ची पर. That's 9033647244. एंड तुम यही पिक्चर्स मुझे डीएम भी कर सकते हो इंस्टा पर अगर अभी हो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. और पिक्चर्स नहीं है तो मुझे एक वॉइस नोट में बताओ कि तुम अपने सिबलिंग्स के बारे में क्या सोचते हो, क्या कहना चाहते हो, बिल्कुल अपने मिर्चीदार अंदाज में. एंड यू कुड विन अमेजिंग हैम्पर्स कैसी नानक फूड्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड विद फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट करो विरानी ज्वेलर्स. Terms and conditions are applied. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This was Mirchi Mornings where the music is Mirchi Dar and vibes are Mirchi. अभी के लिए goodbye है, लेकिन कल दोबारा से मिलूंगी तुम्हें same time same place पर. तब तक के लिए you stay tuned and stay hot.

0: बचपन में ना जहां कहीं मुझे ट्विन्स के बारे में पता लगता था कि वो मेरे आसपास एग्जिस्ट करते हैं, आई यूज्ड टू बी रियली एक्साइटेड टू सी देम।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. Yes, the concept of twins ना, it used to be very, very new for me. क्योंकि इतने आम तरीके से हमें twins देखने को नहीं मिलते थे ना। हमें जो देखने को मिलता था 90s की movies में, that was डबल रोल। ट्विन्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता था हमको, हमको बस ये पता था कि एक बंदा एक दुनिया में जी रहा है और एक बंदा दूसरी दुनिया में जी रहा है, लेकिन दोनों की शक्लें एकदम सेम है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, ट्विन्स भी नहीं है, भाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों की शक्लें एक दूसरे की जैसी बिल्कुल डिटो कट कॉपी पेस्ट है। तभी तो 90s के बॉलीवुड ने ऐसे थोड़ी ना दिल में घर कर लिया था, जहां हमें डबल रोल का कॉन्सेप्ट पहले पता लगा और ट्विन्स का कॉन्सेप्ट बाद में पता लगा बॉस। तो चलो फिर आज ना मैंने सोचा है कि मिड डे मोहब्बत में बॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में बात करते हैं जहां पर डबल रोल देखने को मिले थे। और बॉलीवुड में ये कोई बड़ी बात थी कि 90s के दौर में हमें डबल रोल देखने को ना मिले किसी फिल्म में, हर दूसरी तीसरी फिल्म में डबल रोल हुआ ही करता था बॉस। तो आज कौन कौन सी फिल्में आर ऑन द लाइन आपको पता लगेगा इन अ वाइल, लेकिन अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए आपसे कह देती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: दो जुड़वा बहनें, जिनमें से एक बिल्कुल सीधी सादी और दूसरी एकदम तेज तरार। एक जो थी वो महलों में रहती थी लेकिन ऐश नहीं करती थी। दूसरी जो थी वो बस्ती में रहती थी लेकिन आराम से ऐश करती हुई रहती थी। और ये जो फिल्म है ये है लाइन में लगी हुई, बिकॉज आज डिस्कस होने वाले हैं बॉलीवुड के डबल रोल्स। Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and the movie that I'm talking about is चालबाज। ये वो चालबाज है which was most talked about in the 90s। श्रीदेवी ने क्या काम किया ना, and as a double role वाला character, उन्होंने और ही धमाकेदार काम किया। मतलब श्रीदेवी में भी एक पर एक मुफ्त। But you know, इस movie के पीछे एक बड़ी बढ़िया सी कहानी है, और वो कहानी बोनी कपूर से relevant है। Of course, at that time, बोनी कपूर और श्रीदेवी का कोई खास लेना देना नहीं था, लेकिन at that time, अनिल कपूर और बोनी कपूर, इन दोनों ही लोगों को जब पता लगा कि चालबाज सनी देओल के साथ अनाउंस हो गई है, तो ये दोनों पहुंचे सीधे फिल्म मेकर्स के पास। अब हुआ ये था कि ये वो दौर था जब बोनी कपूर और अनिल कपूर फॉर सर्टन रीजंस बिल्कुल फिल्में नहीं ले रहे थे। उन्होंने जितना भी साइनिंग अमाउंट अगर किसी फिल्म का लिया भी था ना, वो भी वापस दे दिया। लेकिन इसी दौरान जब इन्हें चालबाज के बारे में पता लगा, तो ये प्रोड्यूसर्स के पास पहुंचे कि यार अनिल कपूर को साइन कर लो इस फिल्म के लिए और सनी देओल को बाहर कर लो। जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, सनी देओल ने इतनी अच्छी और हिट फिल्म दी है पाप की दुनिया, उसी के बाद तो हमने सनी देओल को इस फिल्म के लिए लिया है। लेकिन अनिल और बोनी कपूर तो अपने प्राइसेस भी कम करने के लिए तैयार हो गए, ताकि प्रोड्यूसर जो है वो टेम्प्ट हो जाए कि सनी देओल को बाहर कर दें और अनिल कपूर को इन। फिर भी प्रोड्यूसर नहीं माने और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सनी देओल को ही रखेंगे इस फिल्म के लिए, क्योंकि उन्होंने सनी देओल के साथ तो 3 films का एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था। सो ही हैड नो इंटेंशंस ऑफ ड्रॉपिंग हिम आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। और यहाँ अनिल कपूर, जिनको लगा था कि ये फिल्म उनके हाथ में आएगी, वो आई नहीं। एक तरफ अनिल कपूर और बोनी कपूर इस बात को लेकर सैड हो गए थे, और दूसरी तरफ इस फिल्म के डायरेक्टर पंकज पारशर वाज आल्सो सैड वंस अपॉन अ डे ड्यूरिंग द शूट ऑफ दिस फिल्म। हुआ ये था कि वो जो रोहिणी हतंगड़ी जी के साथ सीन नहीं था श्रीदेवी का, जहां पर वो रोहिणी जी के चेहरे को एकदम पोत देती है बुरी तरीके से, वेल उस सीन के टाइम पर द डायरेक्टर पंकज पारशर वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द मेकअप जो रोहिणी जी का किया गया था। वो मेकअप वैसा लग ही नहीं रहा था जैसा लगना चाहिए था। तो हुआ ये कि श्रीदेवी ने खुद डिसाइड किया कि वो अपना मेकअप किट लाएंगी और फिर खुद ही रोहिणी जी का फेस जो है उसको पेंट करना शुरू कर देंगी। तो जो हम ये सोच के बैठे थे आज तक कि रोहिणी जी का जो पेंट फेस हुआ हुआ है वो किसी मेकअप आर्टिस्ट ने किया होगा और श्रीदेवी सिर्फ एक्टिंग कर रही है उनका मेकअप करने की, तो ना जी, वो मेकअप श्रीदेवी ने ही किया था रोहिणी जी के चेहरे पर। इसे कहते हैं श्योर प्रोफेशनल। और सीता गीता की ये रीमेक हम सबके दिलों में घर कर गई थी, नहीं क्या? यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। On Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट सारा जमाना सारा का दीवाना मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अच्छा ये बताओ एक और एक क्या होते हैं, अगर आपकी बॉलीवुड की नॉलेज अच्छी है तो आप बोलोगे 11 और अगर आपकी मैथ की नॉलेज अच्छी है तो आप बोलोगे 2, लेकिन मैं बोलूंगी जुड़वा।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा और मिड डे मोहब्बत पर आज मेरे यारा हम बात कर रहे हैं 90s की वो फिल्में जहां पर डबल रोल थे, यानी कि एक के साथ एक मुफ्त, और उसमें से एक मेरी वन ऑफ द फेवरेट इज जुड़वा। मतलब मैंने 2 तो नहीं देखी, लेकिन मैं 1 में इतनी खोई हुई थी ना कि मुझसे 2 देखी नहीं गई। एक्चुअली बात ही थी, मगर यार मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर जुड़वा में सलमान खान ना होते तो क्या होता, मुझे ये फिल्म शायद इतनी पसंद भी नहीं आती। आई वॉज अ डाई हार्ड सलमान खान फैन एट दैट टाइम। हाँ लेकिन एट दैट टाइम एक्चुअली ये फिल्म सलमान खान करने भी नहीं वाले थे, ये फिल्म तो गोविंदा करने वाले थे। एंड ही वॉज डूइंग दिस फिल्म विद द फिल्म मेकर जिनका नाम था नंदू तोलानी, एंड डेविड धवन वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म ऑफ कोर्स। लेकिन सलमान खान को जब इस प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा तो उन्होंने गोविंदा से रिक्वेस्ट करी कि यार प्लीज हैंड ओवर दिस प्रोजेक्ट टू मी एंड साजिद नादियाडवाला। गोविंदा ने हाँ कर दी एंड दिस इज हाउ सलमान एंडेड अप डूइंग जुड़वा। हालांकि डेविड धवन जो थे उनको बड़ा डाउट हुआ करता था कि सलमान इस तरीके की फिल्म पुल आउट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमेडी की जरूरत थी यार, और बेतहाशा कॉमेडी की जरूरत थी, वो भी डबल रोल के साथ। ये सलमान खान का पहला डबल रोल था यार, तो डेविड धवन थोड़े से नर्वस थे इस चीज को लेकर। लेकिन जब उन्होंने फिल्म का आउटपुट देखा तो वो खुद हैरान थे कि ये सलमान खान ने क्या कर डाला यार। इनफैक्ट सेट्स पर ये मजाक तो क्रू मेंबर्स भी किया करते थे कि कभी कभी सलमान खान अपने कैरेक्टर राजा की एनर्जी के साथ प्रेम के सीन्स की शूट्स कर लिया करते थे, क्योंकि इन दो कैरेक्टर्स, एक टपोरी स्टाइल राजा और दूसरा मासूम सा प्रेम, इन दोनों ही कैरेक्टर्स का जो शिफ्ट होता था वो बड़ा ट्रिकी हुआ करता था। तो ऐसा भी हुआ करता था। हे बाय द वे, आपको एक अंदर की बात बताऊं, इस फिल्म में रंभा जो सीधे साधे सलमान खान के ऑपोजिट हैं, आपको पता है उनकी आवाज उनकी नहीं है, तब्बू ने उनकी आवाज इस फिल्म में डब की थी। हाँ जी, कमिंग अप मोर इन्फोज ऑन 90s की डबल रोल वाली फिल्में इन अ व्हाइल। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कितने मजे लिए थे ना जब हमने डीडी वन पे किशन कन्हैया देखी थी, और कितने मजे लिए थे हमने उस बात पर जब चालू वाला अनिल कपूर जो था वो घर के अंदर था और घर वालों की बैंड बजा रहा था। इसीलिए तो सूट बूट में आया था कन्हैया बैंड बजाने को। Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, पर्दे के ऊपर जो था वो तो हमने बड़े मजे ले लेकर देखा, लेकिन पर्दे के पीछे जो हो रहा था वो ये था कि अनिल कपूर बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे थे अपने इन दोनों किरदारों को एक साथ निभाने के लिए, बिकॉज इट वॉज हार्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू कैरेक्टर्स ना, एक किशन जो कि इनोसेंट सा बंदा है और एक कन्हैया जो बिल्कुल ही स्ट्रीट स्मार्ट बंदा है और ऐसी की तैसी कर देता है लोगों को। वेल, ये कहा जाता है कि वो अपने वॉइस मॉड्यूलेशन प्रैक्टिस किया करते थे, उठने बैठने के तौर तरीके अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस किया करते थे ताकि वो ये डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सी बॉडी लैंग्वेज किशन की है और कौन सी बॉडी लैंग्वेज कन्हैया की है, और ये सब वो हफ्तों हफ्तों तक करते रहे। राकेश रोशन ने लेटर एक किसी इंटरव्यू में ये बात कही थी कि किशन कन्हैया की सक्सेस ने उन्हें वो कॉन्फिडेंस दिया जिसकी वजह से वो और बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाए, जैसे कि करण अर्जुन एंड देन इवेंचुअली कहूना प्यार है। एंड हे, बाय द वे, इन दोनों ही फिल्मों में राकेश रोशन ने डबल रोल के कॉन्सेप्ट से ही फिल्म बनाई है। आई थिंक उनको ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि डबल रोल का कॉन्सेप्ट डबल पैसे भी कमाकर दिखाता है बॉक्स ऑफिस पर, और ये बात बिल्कुल गलत भी साबित नहीं हुई। हाँ, करण अर्जुन और कहो ना प्यारे दोनों ही ब्लॉकबस्टर हिट थी, है कि नहीं? यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एज अ काजोल फैन सिर्फ मैं ही नहीं और भी कई सारे लोग इस फिल्म के लिए बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि ये फिल्म काजोल की शादी के बाद की पहली फिल्म थी, कुछ खट्टी कुछ मीठी।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिडडे मोहब्बत पर उन फिल्मों की चर्चा हो रही है जहां पर डबल रोल देखे गए हैं। उनमें से एक फिल्म थी कुछ खट्टी कुछ मीठी। हालांकि ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ बहुत धमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी ये फिल्म लोगों को बड़ी पसंद आई है बिकॉज ऑफ द रीजन कि काजोल का कैरेक्टर ही ऐसा था यार, इतना क्यूट कैरेक्टर प्ले किया था उन्होंने इस फिल्म के अंदर। शी प्लेड द रोल ऑफ एक्चुअली टू पीपल, एक टीना और एक स्वीटी। टीना जो कि बहुत ही स्वीट शाय एंड ओबीडियंट थी, एंड स्वीटी जो बोल्ड मॉडर्न और एकदम ही आउटगोइंग मुंह फट जैसे कि काजोल हैं। एंड दिस वाज वन ऑफ अ रेयर डबल रोल फिल्म्स, क्योंकि दुश्मन में भी उन्होंने डबल रोल प्ले किया था लेकिन बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं। लेकिन हाँ, दिस वाज अ बिग चैलेंज जिनको कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस भी किया और एंजॉय भी किया बिकॉज शी वाज प्लेइंग टू ऑपोजिट पर्सनालिटीज। काजोल की एनर्जी शूटिंग के दौरान इतनी जबरदस्त थी कि वो एक सीन किया करती थी, अपना कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम जो था उसको चेंज किया करती थी, हेयर मेकअप सब कुछ बदल जाया करता था और फिर वो अपने ट्विन कैरेक्टर के रोल में आ जाया करती थी ऑल इन द सेम डे। इनफैक्ट क्रू तो इस बात का भी मजाक उड़ाया करता था कि काजोल डबल शिफ्ट्स में काम कर रही है, विच वॉज नॉट एट ऑल रॉन्ग। एंड इसी के साथ साथ देयर वॉज अ लॉट ऑफ फन दैट वॉज हैपनिंग ऑन द सेट्स, सो मच सो दैट कि कुछ इमोशनल सीन्स ऐसे थे जहां पर काजोल अपने जोक्सी मारे जा रही थी, जिसकी वजह से होता ये था कि सब हंस दिया करते थे और ऋषि कपूर स्पेशली हंसते ही रहा करते थे और डायरेक्टर को बार बार टेक लेना पड़ रहा था। मैंने कहा ना, काजोल सिंस देन टिल नाउ हैज बीन स्वीटी, द आउटगोइंग बोल्ड एंड मॉडर्न, एंड दैट इज हाउ वी लव काजोल। लाइक, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हालांकि डुप्लीकेट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं आई थी, लेकिन मुझे बड़ी पसंद आई थी बिकॉज ऑफ द सोल रीजन यार कि इसमें शाहरुख खान थे, वो भी एक नहीं दो दो।
2: ये कौन बोला?
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिडडे मोहब्बत पर मेरे यारा उन फिल्मों की चर्चा की जा रही है जो 90s अर्ली 2000 के दौर में बनी और डबल रोल लेकर बनी। वो कॉन्सेप्ट जो आजकल तो हमें देखने को ही नहीं मिलता यार, है ना। थोड़ा सा कम ड्रामेटिक हो गए हैं हम लाइफ में, लेकिन एट दैट टाइम बड़े ड्रामेटिक हुआ करते थे यार। और इसी दौर में बनी डुप्लीकेट, जहां पर शाहरुख खान दो रोल्स प्ले कर रहे थे, एक मन्नू का और एक बबलू का। लेकिन मजेदारी वाली बात तो ये थी कि शाहरुख खान ये जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ किया करते थे ना एक रोल से दूसरे रोल के अंदर, तो वो सेट्स पर भी यही कहा करते थे कि यार उनके दिमाग में ना दो चिप्स हैं, एक बबलू की और एक मन्नू की, तो वो उन चिप्स को स्विच करते रहते हैं सो दैट उन कैरेक्टर्स को वो प्ले कर पाए। और सेट्स की एक बात है जो क्रू मेंबर्स कहा करते थे कि शाहरुख खान कभी कभी ये भी किया करते थे मजाक मजाक में कि वो जो विलन वाली एनर्जी थी ना उसको पूरे सेट पर कैरी किया करते थे ऑफ द कैमरा, लोगों को चौंकाने के लिए और फिर सबको हंसाने के लिए। और अगर हंसने की बात की जाए तो जूही चावला भी कोई कम नहीं थी, वो शाहरुख खान की बातों पे इतना हंसा करती थी कि भाई एक टाइम तो ऐसा आया कि जब ये गाना शूट हो रहा था ना एक शरारत, उस टाइम पर उनकी हंसी रुकी नहीं रही थी। इवेंचुअली उसकी वजह से हुआ ये कि इस गाने में इतने रीटेक्स दिए गए और लिए गए कि इसका जो स्केड्यूल है वो ही स्ट्रेच हो गया। एक व्हाट्सएप मैसेज और दूसरी हंसी, ये दो ऐसी चीजें जो कहीं भी आ सकती है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सुनील शेट्टी कॉमेडी भी कर सकते हैं, ये बात तो हमको तब पता लगी जब हमने देखी गोपी किशन।
2: क्योंकि ये कौन बोला? मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप।
1: और इसी फिल्म से तो ये फेमस डायलॉग आया था जो आज तक भी एपिक लाफ्टर की वजह बन गया है। हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिडडे मोहब्बत पर 90s के डबल रोल्स की चर्चा हो रही है, जिसमें से सुनील शेट्टी का ये डबल रोल तो किसी को नहीं भूलता यार, एक गोपी का और एक किशन का। बोलो गोपी, टेल टेल। वेल, इससे पहले एक्चुअली सुनील शेट्टी जो थे ना, वो एक्शन हीरो ही थे, तो इसीलिए सबको डाउट था यार कि ये कॉमेडी भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या कॉमिक टाइमिंग थी यार उनकी, मतलब वो मास फेवरेट हो गए थे इस फिल्म के बाद। लेकिन कॉमेडी के

साथ साथ इस फिल्म में एक्शन भी था। और एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान हुआ ये था कि सुनील शेट्टी को चोट लग गई थी बुरी तरीके से, लेकिन फिर भी उन्होंने शूटिंग डिले नहीं करी एंड ही कैरीड ऑन विद हिज इंजरी एंड द शूट एज वेल। लेटर ऑन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू जब सुनील शेट्टी से पूछा गया कि गोपी का कैरेक्टर उनके कैरेक्टर से ज्यादा मेल खाता है या किशन का, तो उन्होंने किशन के लिए ऑप्ट आउट किया था क्योंकि ऑफ कोर्स गोपी इतना भोला भाला, दुनिया खा जाए उसको, कौन गोपी बनना चाहेगा उस दौर में भी और आज के भी दौर में। लेकिन सुनील शेट्टी गोपी बने, और क्या गोपी बने। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर मीठी सुपारी,
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हें याद करते ही ना एक खुशबू सी आती है जो तुम्हारा पैकेट खोलते ही आया करती थी। भीनी भीनी सी, मीठी मीठी सी। तुम्हें खाना हम बच्चों को वैसे अलाउड नहीं था और अक्सर मैं तुम्हें खरीदती भी नहीं थी, लेकिन कुछ दुनिया की परवाह ना करने वाले क्लासमेट्स के बैग में तुम अक्सर मिल जाया करती थी। और जब कभी कभी तुम्हें चखती थी ना तो मजे और ज्यादा आया करते थे, क्योंकि जो कम होता है उसकी वक्त भी तो ज्यादा हो जाती है। क्या बोलती हो? तुम्हें जुबान पर रखना बुरा माना जाता था और कहते थे कि तुम सेहत को हानि पहुंचाती हो, लेकिन आज मेरी याद में तुम आंखों में पानी पहुंचाती हो, क्योंकि तुमसे जुड़े किस्से बचपन की शैतानी और दोस्तों के किस्सों के याद दिलाते हैं। थी मेरी एक दोस्त जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आया करते थे और सब उससे इसी वजह से दूर भाग जाया करते थे, लेकिन वो मस्त रहने वालों में से थी। तुम अक्सर उसी के पास पाई जाती थी और क्लास में सो कॉल्ड अच्छे बच्चे उसके बारे में खुसुर पुसुर किया करते थे। आज तुम्हें याद करते करते उसकी याद आ गई यार, कि उसके साथ जो होता था वो बॉयकॉट नहीं तो क्या था। मुझे भी बोला जाता था कि तुम अच्छी बच्ची हो, उसके टच में मत रहा करो। आज सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार इतनी कम उम्र में ये सब हमें सिखाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन आज मुझे ना इस बात का भी ख्याल आता है कि कितनी हिम्मत थी यार मेरी उस दोस्त में, जो ये सब जानकर भी अपनी दुनिया में मस्त रहने की कोशिश किया करती थी। पता नहीं कि वो वाकई में स्ट्रांग थी या स्ट्रांग होने की एक्टिंग किया करती थी। आज तक नहीं पता लगा मुझे इस बात का। स्कूल बदला तो ना उससे टच में रही और ना तुमसे इतनी ज्यादा मुलाकात होती थी फिर, क्योंकि तुम्हें खिलाने वाला कोई था नहीं ना। लेकिन तुम दोनों ही मेरे ख्यालों में तब भी थे और आज भी हो। वो मुस्कुराती हुई और तुम महकती हुई, तुम्हारी भीनी भीनी खुशबू में आज भी खोई हुई तुम्हारी पुरानी दोस्त सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: सोनू निगम, श्रेया घोषाल एंड सलीम मर्चन की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म कुर्बान इज कैसेट के साइड ए का पहला गाना।
1: मिर्ची 90s कैसेट।
2: वेल, द ट्रैक जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक गाना नहीं है, दिल का सुकून भी है। शुक्र

you know, ये बात तो सच्ची है कि जो हम आम लोग हैं अपनी आम जिंदगी में वो लव्स कहीं कहीं से ढूंढ कर नहीं ला पाते हैं जो गानों में हमें मिल जाते हैं। नाउ ये गाना इतना खूबसूरत है और इतनी खूबसूरती से ये ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा है कि उसने हमें उस इंसान से मिला दिया जिसे मिलने के बाद हमें सुकून मिलता है। यू नो, रूह को सुकून मिलने वाले लोग कितने कम मिलते हैं ना जिंदगी में, और जब वो मिल जाए तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए ये गाना बिल्कुल एप्ट है। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, हमें लव्स नहीं मिल पाते हैं, हमें बस महसूस हो रही होती है कोई बात, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसे लफ्जों में कैसे बयां करें। वहीं ये गाना आता है जो ये कह रहा है कि तेरी बाहों में ये जिस्म खिल गया, तेरी सांसों में चैन मिल गया, कैसे रहें अब हम जुदा। वही ये गाना हमारी मदद कर देता है क्योंकि इस गाने में यही तो शुक्रिया अदा किया गया है कि यार किस तरीके का सुकून मिला है एक इंसान से मिलने के बाद कि उसकी बाहों में ये जिस्म खिल गया है, उसकी सांसों में चैन मिल गया है, और कैसे रहा जाए उस इंसान से अब जुदा। तेरे पास हम इतने हुए, तेरे ख्वाब अपने हुए, ऐसे हुए अब हम फिदा। और इसी बात पर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा गया है कि ऐसी उसकी इनायत, मिट गई हर शिकायत, हम पे मेहरबान दो जहां। एंड दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड जो हमारी जिंदगी में प्यार के आने पर हम महसूस कर पाते लेकिन उसे कह नहीं पाते। तो बस जी, ये गाना आपके दिल की बात को कंप्लीट करते हुए आप ही के लिए लगाती हुई जा रही हूँ, और आपसे कहती हूँ अब कि हम है रहे प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा मुझे मिल जाइएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ. जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना. डन
2: कैन
1: डन. अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें लेकर के हाजिर हो गई है स्टूडियो में हॉट सीट पे आपकी प्यारी श्रेया। हेलो हेलो, वेलकम। अच्छा, जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं तो हमें हमेशा ये लगता है ना कि यार हीरो का क्या होगा, और अगर हीरो को कोई मतलब कोई डिजीज होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वी कीप थिंकिंग इन द एंटायर फिल्म कि यार बस किसी तरह हीरो जो है ना वो जिंदा बच जाए। मतलब ये दिल से आवाज़ निकलती है कि हीरो जो है वो सर्वाइव कर जाए। लेकिन एक ऐसी फिल्म के बारे में आज मैं बताऊँगी जिसमें डायरेक्टर साहब ने राइटर साहब को ना साफ साफ ये कह दिया था कि ओपनिंग सीन में ही पता चल जाए कि हमारा हीरो नहीं रहा। वेल, ये कौन थे और कौन सी फिल्म की बात हो रही है सब बताऊंगी आपको, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। कि मैं ना आपको ऐसे थोड़ा सस्पेंस में छोड़ के जाती हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है, बिकॉज देन आई एम श्योर कि यू विल कम बैक टू मी और यू विल कम बैक टू पुरानी जीन्स। तो बस गाने सुन करके वापस आओ। आज की कौन सी खूबसूरत फिल्म है उसके बारे में बात करेंगे। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गुलजार साहब को ऋषिकेश दा के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि ओपनिंग सीन में ही ऑडियंस को पता चल जाए कि भाई आनंद जिंदा नहीं है। पुरानी जींस पे आप हो श्रेया के साथ एंड ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म आनंद। सोचो हम कितनी सारी फिल्में देखते हैं ना, और उसमें थ्रू आउट द फिल्म हम बस ये सोचते रहते हैं कि हीरो जो है ना वो हीरो बन करके निकले, हीरो जो है वो सर्वाइव कर जाए, फिर चाहे वो उसका लव एंगल हो या फिर लाइफ एंगल हो। लेकिन इस एक पर्टिकुलर फिल्म में गुलजार साहब जिन्होंने फिल्म को लिखा था, उनको ना डायरेक्टर साहब ऋषिकेश दा ने स्ट्रिक्टली कहा था कि ओपनिंग सीन्स में ही ऑडियंस को ये पता चल जाए कि आनंद इज नो मोर। वेल, ऐसा उन्होंने क्यों किया था, इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड रीजन है। इनफैक्ट आई शुड से बहुत ही ऋषिकेश दा रीजन है। क्या है वो, आई विल लेट यू नो। कम राइट बैक। मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषिकेश दाना हमेशा एसेंस ऑफ लाइफ पे फिल्में बनाते थे, कुछ ऐसी क्वालिटीज, कुछ ऐसे फ्लेवर्स जो हमको अपनी जिंदगी में उतारने चाहिए, एंड दैट वाज हिज वे ऑफ डायरेक्शन, दैट वाज हिज वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। फिर चाहे उनकी कोई भी फिल्म ले लो, अभिमान ले लो, या फिर आज जिसकी बात कर रहे हैं आनंद ले लो। सो ऋषिकेश दा चाहते थे कि जब वो आनंद बना रहे हैं ना, तो लोग, ऑडियंस जो फिल्म देखने आए, वो पूरे टाइम ये ना सोचे कि शायद आनंद जिंदा रह गया, शायद आनंद ने कैंसर को डिफीट कर दिया होगा। वो अगर कंसंट्रेट करें तो अपनी लाइफ की क्वालिटी पे कंसंट्रेट करें। और इसीलिए ऋषिकेश मुखर्जी ने भाई स्क्रिप्ट राइटर यानी द राइटर ऑफ द फिल्म गुलजार साहब को ये एकदम ओपनली कहा था कि वो चाहते हैं कि पहले सीन में ही ऑडियंस को पता चल जाए कि आनंद विल नॉट सर्वाइव, जिससे कम से कम ऑडियंस के दिल में एक क्वेश्चन ना रह जाए और वो पूरी फिल्म ये सोचते हुए ना देखे कि शायद आनंद जो है ना वो जी जाएगा, बल्कि पूरी फिल्म में वो एसेंस ऑफ लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करे कि हाउ टू आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। इसीलिए इस फिल्म में वो डायलॉग है ना, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय, क्या बात है। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, आनंद की बातें एकदम आनंदमय होके करेंगे। सो कम राइट बैक।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब इनको प्यार से बाबू मोशाय कहते थे, और इस फिल्म के थ्रू वो राज कपूर साहब को एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड वी आर डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट वो फिल्म जिसमें बाबू मोशाय को फेमस किया, यानी आनंद को। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले ऋषिकेश मुखर्जी, तो जब उन्होंने फिल्म बनाई वो चाहते थे कि वो अपने सबसे क्लोज दोस्त राज कपूर को ना कहीं से इस फिल्म में उतार करके लाएं। तो उन्होंने सोचा कि इस फिल्म में वो ना अमिताभ बच्चन को जो प्यार से राजेश खन्ना बोलेंगे वो होगा बाबू मोशाय, बिल्कुल वैसे ही जैसे राज कपूर साहब उनको प्यार से बाबू मोशाय कहते थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। एक टाइम तो ऐसा आया जब ऋषिकेश दा ने सोचा कि इस फिल्म में आनंद का रोल करने वाले यानी राजेश खन्ना का रोल शुड गो टू राज कपूर साहब, लेकिन फिर उन्होंने अपने इस थॉट को ही कैंसिल कर दिया, और उसके पीछे एक रीज़न था, दोस्ती का रीजन। वो रीजन पूरा क्या था डिटेल में बताऊंगी। कम राइट बैक, मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
2: दीवाना
3: एक दीवाना शहर में
2: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी
3: दो दीवाने शहर में.

पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, एंड आज एक ऐसी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो क्या आप रेट्रो फैन हैं भी कि नहीं है। इन केस आपने 0.00001% भी नहीं देखी हो ना, तो यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस फिल्म। इन फैक्ट इस फिल्म को ना रीविजिट हमें करते रहना चाहिए टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज कि हम जिंदगी बड़ी जिए, लंबी नहीं यार। Of course, I'm talking about आनंद। So, मैं बता रही थी गानों के पहले कि भाई ऋषिकेश मुखर्जी और राज कपूर साहब बहुत अच्छे दोस्त थे, और ऋषिकेश दा चाहते थे कि वो किसी तरह राज कपूर साहब को अपनी इस फिल्म में उतारें। तो उन्होंने बाबू मोशाय वर्ड, जो राज साहब ऋषिकेश दा को प्यार से बोलते थे ना, उसको इस फिल्म में रखा। इन फैक्ट वो तो ये भी चाहते थे कि आनंद का रोल जो काका यानी राजेश खन्ना ने किया है वो रोल राज कपूर साहब निभाएं। ये स्क्रिप्ट लेकर के वो उनके घर भी गए, लेकिन दहलीज से ही वापस लौट आए। वो इसलिए क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ कि उसी समय राज साहब की तबीयत ख़राब हुई थी, उनको हार्ट स्ट्रोक आया था, एंड राज साहब को ऑन स्क्रीन भी जाते हुए देखना ये ऋषिकेश दा नहीं ले पाते। दिस इज़ नॉट वॉट ही कुड हैव टेकन ईजिली। तो उन्होंने ये आइडिया बिल्कुल स्क्रैप किया और फिर उन्होंने कहा कि राज साहब ने राजेश खन्ना ये रोल करेंगे। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें चलती रहेंगी। मैं हूँ श्रेया।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

बच्चन साहब तो बिल्कुल भी ये रोल नहीं करना चाहते थे. इट वॉज हिज डियर फ्रेंड एट दैट टाइम महमूद साहब हु एक्चुअली कन्विंस्ड हिम टू डू इट. पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ और आनंद फिल्म की बात हो रही है. सो बच्चन साहब को जब बाबू मोशाय वाला रोल मिला, यानी डॉक्टर साहब का रोल मिला काका के लिए, एज इन राजेश खन्ना के लिए, तो भाई बच्चन साहब ऑलरेडी कई सारी फिल्में कर चुके थे, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ देम फ्लॉप्ड एट द बॉक्स ऑफिस. पर वो ना ये रोल इसलिए नहीं करना चाहते थे, एक तो ऑलरेडी सुपरस्टार राजेश खन्ना थे इसमें, उसके बाद उनका रोल जो था वो बहुत ज़्यादा नहीं था. तो उन्होंने ना महमूद साहब से कहा कि भाई इस पूरी फिल्म, दिस एंटायर फिल्म इज अबाउट आनंद, यानी राजेश खन्ना, मैं इसमें क्या ही करूँगा. सो भाई महमूद साहब ने उनको समझाया कि काका जो कि सुपरस्टार थे एट दैट टाइम, उनके साथ एक फ्रेम में ही आना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और जब वो उस फ्रेम में आएंगे तो वो ऑडियंस को अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा सकते हैं, उस ऑडियंस को जो अभी तक बच्चन साहब को देखने बॉक्स ऑफिस पे गई ही नहीं है. ये बात उनको क्लिक करी एंड ही डिड दिस रोल. एंड एक्चुअली उनका रोल बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ था. मतलब जब आप आनंद के बारे में सोचते हो तो सिर्फ काका नहीं, बच्चन साहब भी जहन में ज़रूर आते हैं. इसी फिल्म की बातें विद मी श्रेया आज, ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्च

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

अच्छा, ऋषिकेश दा की खूबी थी कि अगर वो किसी पॉइंट को समझते थे, अगर किसी लॉजिक को समझते थे कि वो सही है, तो उसके बाद वो किसी की नहीं सुनते थे। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म आनंद टुडे, और यही बात उन्होंने अप्लाई की थी आनंद के म्यूज़िक के लिए। सो ऋषिकेश दा को बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे बोला कि योगेश एज अ लिरिसिस्ट एंड सलिल चौधरी एज अ म्यूज़िक कंपोजर अब सक्सेसफुल नहीं है, उनको ना नए म्यूज़िक कंपोजर्स और लिरिसिस्ट के साथ काम करना चाहिए फॉर दिस फिल्म। लेकिन क्योंकि सलिल चौधरी उनके दोस्त भी थे और हमेशा से क्वालिटी सॉन्ग्स देते आए थे, इवन दो वो कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, भाई ऋषिकेश दा को लगा कि नहीं, मैं अपनी म्यूजिक टीम नहीं चेंज करूंगा। और उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री। आनंद के गाने सुपर डुपर हिट ही नहीं, इनफैक्ट ऑल इंडिया रेडियो पे हर हफ्ते कई हफ्तों तक भाई म्यूजिक लिस्ट में, चार्ट लिस्ट में एकदम अव्वल आते थे। इसी फिल्म का गाना विच इज कंपोज बाय सलिल चौधरी एंड रिटन बाय योगेश जी, कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस गाने के लिए तो खुद काका यानी राजेश खन्ना ने कहा था कि मुझ पे पिक्चराइज होगा ये गाना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म आनंद, जिसको बनाया ऋषिकेश मुखर्जी ने। इसको लिखने वाले थे गुलजार साहब और इसमें थे काका यानी राजेश खन्ना एंड बच्चन साहब। एक दिन ना काका रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाते हैं और वो देखते हैं कि योगेश जी लिरिसिस्ट बैठे हुए हैं और सलिल चौधरी जो फिल्म के गाने कंपोज कर रहे हैं एंड मनाटे कुछ गुनगुना रहे हैं और सलिल दाना उसमें म्यूजिक दे रहे हैं ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना, और योगेश जी ना इसमें लिरिक्स भर रहे हैं, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। तो भाई काका को पता चलता है कि आनंद फिल्म का ये जो गाना है बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज होगा। काका को इस गाने के लिरिक्स, ये गाना इतना इतना पसंद आया कि वो सीधे गए ऋषिकेश दा के पास और कहा कि मैं चाहता हूँ ये गाना मुझ पर पिक्चराइज हो और ये सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर की तरह आकर के वेस्ट ना हो। तो अब इस फिल्म का बजट तो कुछ खास होना नहीं था, तो ऋषिकेश दा ने कहा अच्छा अगर करेंगे भी तो कहाँ करेंगे, हम कहीं ले नहीं जा सकते, हमारा शूट यहीं होना है, सब कुछ यू नो चार दीवारी के अंदर होके ख़त्म हो जाएगा। तो काका ने कहा ठीक है चलो हम जुहू बीच चलते हैं, चौपाटी चलते हैं, मैं बस बीच पे ऐसे टहलूंगा और आप शूट कर लेना दादा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये गाना मुझ पर पिक्चराइज हो। कहते हैं कि काका का इंस्टिंक्ट बहुत काम करता था कि कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सा गाना चलेगा, एंड ही न्यू दैट दिस सॉन्ग इज गोइंग टू ऑलवेज स्टे विद पीपल। And that actually happened, जब ये गाना बना तब से लेकर के आज तक हम कभी ना कभी जिंदगी की कश्मकश में अगर उलझे होते हैं ना तो ये गाना गा ही लेते हैं। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: कभी तो हंसाए।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब इनको प्यार से बाबू मोशाय कहते थे, और इस फिल्म के थ्रू वो राज कपूर साहब को एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड वी आर डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट वो फिल्म जिसमें बाबू मोशाय को फेमस किया, यानी आनंद को। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले ऋषिकेश मुखर्जी, तो जब उन्होंने फिल्म बनाई वो चाहते थे कि वो अपने सबसे क्लोज दोस्त राज कपूर को ना कहीं से इस फिल्म में उतार करके लाएं। तो उन्होंने सोचा कि इस फिल्म में वो ना अमिताभ बच्चन को जो प्यार से राजेश खन्ना बोलेंगे वो होगा बाबू मोशाय, बिल्कुल वैसे ही जैसे राज कपूर साहब उनको प्यार से बाबू मोशाय कहते थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। एक टाइम तो ऐसा आया जब ऋषिकेश दा ने सोचा कि इस फिल्म में आनंद का रोल करने वाले यानी राजेश खन्ना का रोल शुड गो टू राज कपूर साहब, लेकिन फिर उन्होंने अपने इस थॉट को ही कैंसिल कर दिया, और उसके पीछे एक रीज़न था, दोस्ती का रीजन। वो रीजन पूरा क्या था डिटेल में बताऊंगी। कम राइट बैक, मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इतनी सारी खूबियां थी उनमें कि कौन कौन सी बताऊं। पुरानी जीन्स पे आप वो श्रेया के साथ, ऋषिकेश दास जब भी अपनी फिल्में बनाते थे ना, तो उनका सिर्फ एक मोटो होता था, बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये कि जब भी उनका ऑडियंस उनकी फिल्म देख करके निकले ना, तो उसमें ऋषिकेश दास ट्रेडमार्क हो, यानी वो अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचते हुए निकले, उसे कैसे और बेटर करना है वैसे निकले, एंड कोई ना कोई लेसन जरूर लेकर के निकले। ऋषिकेश दास के फिर चाहे आप अभिमान ले लो, या फिर गोलमाल ले लो, या फिर आप डेफिनेटली आनंद ले लो, मतलब लाइफ के लेसन गिविंग फिल्म होती थी। एंड पता है आपको, कोई लैविश सेट नहीं, कोई बहुत ही हाई फाई एक्टर एक्ट्रेस विद लॉट ऑफ मेकअप नहीं, एकदम सिंपल घर के अंदर ही फिल्म शूट हो जाती थी और इसीलिए कम दिनों में होती थी। अगर आप आनंद लो तो 28 दिन में शूट हुई, गोलमाल लो तो 1.25 महीने में शूट हुई, अभिमान लो तो 2 महीने के अंदर, 60 डेज के अंदर फिल्म शॉट खत्म, एडिट एडिट होके रिलीज, बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट। पुरानी जीन्स पे ना ऋषिकेश दास की फिल्मों की बातें चल रही हैं, स्पेशली आनंद की, तो बस आनंदमय रहिए और श्रेया के साथ यहीं पुरानी जीन्स पे रहिए।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी ऑफ कोर्स गाड़ी में बैठना पड़ेगा और हाईवे तक मेरे साथ चलना पड़ेगा। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट इज अ सॉन्ग जो मैं दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि दिए जलते हैं, दिल खिलते हैं बड़ी मुश्किल से जिंदगी में, दोस्त मिलते हैं और बहुत ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, चंद दोस्त जो आपके साथ हमेशा खड़े रहे ना, बस उनको अपने पास ज़रूर रखना। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। अगर मुझसे बात करनी है 1-to-1 तो फेसबुक और इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माई हैंडल, RJSHREYA श्रेया विद लव। गुड नाइट।

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: Mirchi. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ, इट्स टाइम फॉर मी टू गो, नॉट फॉर मी, हम सबको बैठना है और गड्डी में हाईवे तक जाना है। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट, मैं ना उन लोगों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जिन्हें दिल ही दिल में पता होता है कि वो जो चेंज उनकी लाइफ में आ रहा है, जो वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह उनसे बात हो जाए, या फिर उनकी आवाज़ सुनाई दे जाए, या उनका कोई मैसेज आ जाए, या फिर अपने ऊपर ध्यान देने लगे, और फिर भी वो ये सवाल करते हैं क्या यही प्यार है। दिल ही दिल में तो आपको पता है कि यही प्यार है, फिर भी पूछ लो ये सवाल। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू टुमारो। फेसबुक और इंस्टा पे RJ श्रेया विद लव, दैट्स RJ SHREYA विद लव इज माय हैंडल।

0: मिर्ची इट्स हॉट। एक रियलिटी शो पे शुरू हुआ था इनके 7 जन्मों का सफर।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं बात कर रही हूँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अल्टीमेट म्यूजिशियन एंड सिंगर डुओ सचेत टंडन एंड परंपरा ठाकुर, जो अब बन चुकी हैं परंपरा टंडन। एंड यू नो, अक्सर आपने अपने आसपास सुना होगा कि यार अपने वर्क स्पेस में ना आपको कोई रिलेशनशिप नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग गेट्स मिक्स्ड अप, कोई पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ नहीं रह जाती। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सचेत एंड परंपरा, जो मिले थे द वॉइस ऑफ इंडिया के फर्स्ट सीजन में और वहां शुरू हुई उनकी म्यूजिकल पार्टनरशिप। एंड इवेंचुअली बॉलीवुड गॉट द डुओ बिहाइंड बेखयाली एंड मच मोर लव्ड सॉन्ग्स। और आज अचानक इन दोनों के पार्टनरशिप की बात इसलिए चल रही है क्योंकि मेरे शो पे होने वाले हैं ये दोनों ही मिर्ची गिरफ्तार, जिनसे होगी इनके करियर, इनके लाइफ, इनकी पार्टनरशिप, सब चीज के बारे में डिटेल्ड बात। But all of that in a while, Babu Moshai. अभी तो इस गिरफ्तारी के अलावा और भी बहुत कुछ प्लान है ऑन द शो। But to enjoy all of that, you'll have to stay tuned to Mirchi. मैं हूँ आपके साथ श्रुति, it's all.

0: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का गो टू इंस्पिरेशन है ये
1: श्रुति।
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: बाबू मोशाय, मैं साउथ इंडियन फिल्मों की बात कर रही हूँ क्योंकि टाइम एंड अगेन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ से इंस्पिरेशन तो ले ही लेती है। तभी तो इतने सारे हिंदी रीमेक्स हैं ऑफ साउथ फिल्म्स। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ इन्हीं फिल्मों को डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट स्वदेश, नंबर दो पे हमने हेरा फेरी को डिस्कस किया, नंबर तीन पे अजब प्रेम की गजब कहानी, और अब बारी है नंबर चार पे फिल्म गुमराह को डिस्कस करने की। वेल, ये मूवी रिलीज हुई थी इन द ईयर 2023, डायरेक्टेड बाय वर्धन केतकर, जो 2019 में आई तमिल फिल्म थाडम के ऊपर बेस्ड है। ये एक क्लेवर ट्विन मिस्ट्री है जिसमें ग्रिपिंग इन्वेस्टिगेशन को दिखाया गया है। वैसे गुमराह जो है वो एक सस्पेंसफुल फॉर्मूला को कोर्टरूम ड्रामा के साथ मिक्स करके बॉलीवुड फैंस को ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के साथ परोसी गई थी, which definitely keeps you guessing about the movie till the end. चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर पांच पे बात करते हैं अबाउट द फिल्म बिल्लू, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2009। और ये फिल्म 2007 में आई मलयालम फिल्म कथा परयम बोल का हिंदी रीमेक है। ऑल्दो अगर आप मलयालम वर्जन देखेंगे तो आपको शायद बिल्लू समझ में ना आए, लेकिन फिल्म की वार्म स्टोरी टेलिंग ने मेरा दिल तो पर्सनली जीत लिया था। वेल, मेरी इस लिस्ट में अगर आप कोई ऐसी ही फिल्म को ऐड करना चाहें देन फील फ्री टू डू दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का ये गाना हॉलीवुड की मूवी में इस्तेमाल किया गया।
1: बॉलीपीडिया।
0: ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा। यस यस यस, एक सच्चे फिल्मची ने गेस कर लिया होगा दैट मैं फिल्म स्वदेश की बात कर रही हूँ, जो साल 2004 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय आशुतोष गोवारिकर। फिल्म में शाहरुख खान और गायत्री जोशी लीड रोल्स में थे, और इसका जो ये वाला एपिक गाना है, इसको इस्तेमाल किया गया है हॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी फिल्म डेडपूल 2 में। यस, यू हर्ड इट राइट। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गाने का जो ट्यून है ना, वो साल 2001 में ही तैयार कर लिया गया था, बिकॉज दैट वॉज मेड फॉर द मूवी लगान। हाँ जी, लेकिन उस फिल्म में जब इस ट्यून को यूज नहीं किया गया किसी गाने के लिए, देन इट वॉज रीयूज फॉर द मूवी स्वदेश, एंड देन ये एपिक गाना तैयार हुआ। तभी मैं कहती हूँ बाबू मोशाय कि बड़े पर्दे पे जो कहानी देखने जाते हैं हम, उसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां छुपी होती हैं, जो ढूंढ कर मैं आप तक लेकर आती हूँ। तो अपनी फेवरेट फिल्म का नाम मुझे बताइए, आई डू द होमवर्क फॉर यू। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। इन द मीन टाइम, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स ऑल।